मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल हरडिकोंडिदे, पक्कदल्ली ओरिस्सा बिहार निंतुकोंडिदे। हे हे।